0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: Pesh hai Science Works mein nayi aur jeevant pradarshni. Color, see the world in a new light. Yahan dekhein chamakte khanij, trikal bhram, aur bachchon ke liye romanchak haathon se kiye jane wale vyavharik prayog. साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद रंगों को देखें रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Melbourne Museum ki nayi bhavya pradarshni. Rome, Empire, Power, People. Ab khul chuki hai. Australia mein pehle kabhi nahi dekhe gaye. 180 adbhut aitihasik avsheshon ke saath. Janiye aitihasik Rome ki vilasita. Gladiators ka romanch aur aam Rome ke logon ka jeevan. मूर्तियों और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें। बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: अगला कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होगा. 1992 से चला रहा, 2025 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल बेस्ट एथनिक प्रोग्राम से सम्मानित भारतीय और ऑस्ट्रेलियन संस्कृतियों को जोड़ता मेलबर्न वासी भारतीय प्रवासियों द्वारा रचित दिलों दिमागों और मुद्दों को जोड़ता आपके साथ गाता गुनगुनाता हर सप्ताह आता आपका हिंदी का गीतांजलि कार्यक्रम एक बार फिर आ गया है अधिक जानकारी के लिए www.3zzindian.org आइए मिलते हैं आज के कार्यक्रम से
5: आज भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार दस्तक दे रहा है शायद आप जानते हैं उसका जवाब आज़ादी आखिर होती क्या है क्या आज़ादी का मतलब है जो चाहो वो करने की छूट या फिर जो करना चाहते हैं उसे करने का साहस एक लड़की के लिए जो बचपन से परिवार की परंपराओं और सीमाओं में पली है क्या शादी उसके लिए आज़ादी का दरवाज़ा हो लेकिन उसी लड़की के लिए जो खुले माहौल में पली बड़ी है शादी शायद उसकी आज़ादी पर एक नई सीमा खींच दे तो फिर आज़ादी एक ही चीज़ कैसे हो सकती है जो लोग आज़ाद भारत में पैदा हुए उनके लिए आज़ादी का मतलब शायद अपनी पसंद की पढ़ाई अपनी पसंद का काम अपना जीवन साथी अपनी राय रखने का अधिकार हो लेकिन उस पीढ़ी से पूछिए जिसने अंग्रेज़ों का राज देखा था उनके लिए आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं थी वो एक सपना थी एक संघर्ष थी एक कीमत थी और फिर सोचिए अंडमान की उस 15x8 फुट की कोठरी में अकेले बंद सावरकर को चार दीवारें एक छोटी सी कोठरी सालों की सज़ा उसके लिए आज़ादी का अर्थ क्या रहा होगा शायद एक खुला आसमान बिना पहरे के कदम चलना अपने देश को अपना कह पाने का अधिकार और आज की जेन ज़ी शायद कहे कि मेरी लाइफ है माई चॉइस है बेबी मूवर्स जनरेशन शायद कहे जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने सपनों को जी पाना भी आज़ादी है और शायद हमारी पीढ़ी कहे आज़ादी मिली है लेकिन क्या हम सचमुच आज़ाद हैं क्या हम अपने डर से आज़ाद हैं दूसरों की राय से आज़ाद हैं समाज के बनाए हुए दायरों से आज़ाद हैं अपनी पहचान छिपाने की मजबूरी से आज़ाद हैं और सबसे बड़ा सवाल क्या आज़ादी सिर्फ वह है जो हमें किसी ने दी है या आज़ादी वो भी है जो हमें खुद अपने भीतर तलाशनी पड़ती है तो आज भारत के स्वतंत्रता दिवस पर आइए सिर्फ यह ना कहें कि हम आज़ाद हैं एक पल रुककर खुद से पूछें मेरे लिए आज़ादी का क्या मतलब है और शायद हर इंसान का जवाब अलग होगा, क्योंकि आज़ादी एक तारीख नहीं है। आज़ादी एक एहसास है, एक अधिकार है, एक जिम्मेदारी है और शायद एक ऐसी तलाश जो उम्र भर चलती रहती है। तो आइए इस वर्ष की खास इंडिपेंडेंस डे प्रस्तुति में हम बात करेंगे आज़ादी की, उस आज़ादी की जो देश को मिली, उस आज़ादी की जो हमें मिली और उस आज़ादी की जो जिसकी तलाश हम शायद आज भी कर रहे हैं।
6: दोस्तों, आप सुन रहे हैं विपिन को और मैं हूँ राजश्री आपके अपने रेडियो प्रोग्राम गीतांजलि में 92.3 FM पर आप सबका स्वागत है।

0: कुछ गीत खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका एहसास थोड़ी देर और साथ रहता है. वो आएगा. ये जो गीत आप सुन रहे थे ये भी एक ऐसा ही एक गीत है. आज 15 अगस्त के दिन ये हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जी पा रहे हैं. उनके करेज और सैक्रिफाइस को दिल से सलाम. लेकिन आज़ादी का एक खूबसूरत फॉर्म और भी है, अपनी सोच को आज़ाद रखना.
1: बिल्कुल
0: मानते हैं इस बात को विपिन.
1: बिल्कुल सही.
0: वैसे ये इतना आसान भी नहीं है. हमें ना बचपन से एक इनविजिबल ऑडियंस मिली हुई है. लोग क्या कहेंगे, अब कौन हैं ये लोग, कहाँ रहते हैं ये लोग, और इनके पास हम सबकी जिंदगी मॉनिटर करने का इतना टाइम कैसे है, ये आज तक किसी को पता नहीं चला है. शायद आज़ाद सोच जो है वो तब शुरू होती है जब हम हर बात का जवाब सोसाइटी से नहीं, कभी कभी अपने दिल से भी पूछ लेते हैं. जब हम खुद को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की, गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, या ये कहें कि गलती करने की इजाज़त दे देते हैं ना खुद को, तब शायद हम सही मायने में आज़ाद कहलाते हैं.
1: बिल्कुल.
0: तो आज और क्रिएटिविटी भी तो एक तरह की आज़ादी ही है. एक खाली कैनवस पर कोई रूल्स नहीं होते. एक सुर को कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए. एक कहानी को बॉर्डर नहीं रोक सकती. और इमेजिनेशन पर तो मेरे ख्याल से कोई टैक्स लग ही नहीं सकता, राइट?
1: बिल्कुल. क्या इमेजिनेटिव बात कर रहे हैं
0: जी. तो इसी थॉट के साथ आइए आज हम बात करते हैं और क्रिएटिविटी की, जहां आज़ादी सिर्फ सेलिब्रेट नहीं होती है बल्कि हर रंग, हर सुर और हर आइडिया में नज़र आएगी. तो दोस्तों, मैं हूँ राजश्री, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, और मेरे साथ हैं विपिन, आपके अपने गीतांजलि प्रोग्राम रेडियो 3ZZZ 92.3 FM पर. और हमारा फ़ोन नंबर है 9415-1923. और आप अगर हमें कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं. बट
1: वैसे कॉल आ भी रही है लेकिन मैं अभी पिक नहीं करूँगा.
0: हाँ, पहले हम अपने गेस्ट को तो इंट्रोड्यूस कराएं. तो विपिन, आप शुरू करें.
1: तो हमारे आज बहुत दो खास मेहमान हैं. तो मेरी पहली जो मेहमान है वो सिर्फ एक यंग एक्ट्रेस नहीं है, वो सिर्फ एक आईटी प्रोफेशनल भी हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी. यानी एक तरफ टेक्नोलॉजी और लॉजिक की दुनिया और दूसरी तरफ इमोशन और क्रिएटिविटी की दुनिया. और हाल ही में मैंने उनके साथ काम किया एक हिंदी नाटक में जिसमें उन्होंने लीड रोल किया और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. और बड़ी कम उम्र में जिस मैच्योरिटी और क्यूरियोसिटी के साथ वो अपने काम और अपनी ज़िंदगी को देखती हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे. और उनके विचार में कला हमें सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती बल्कि हमें अलग अलग जिंदगियां जीने का और अलग अलग नज़रिए को समझने का मौका देती है. तो आज हम जानेंगे कि आखिर इस यंग एक्ट्रेस के मन में थिएटर के लिए इतना आकर्षण क्यों है, कहां से आया, और आईटी और एक्टिंग, इन दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं को वो कैसे साथ लेकर चल रही हैं. ईशा जी, 92.3 FM गीतांजलि रेडियो प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: Thank you so much, Vipin sir. I call him sir because I learned a lot from Vipin ji. So thank you for having me here and for the beautiful introduction.
0: तो विपिन, लगता है आज तो एक पे एक फ्री फ्री फ्री वाला माहौल चल रहा है. हमारे साथ एक और गेस्ट है, डबल बनाजा है आज. तो मैं हमारी नेक्स्ट गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी. मैं अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट शो शुरू होने के पहले, उनसे बात कर रही थी. तो वो एक बहुत ही बेहतरीन डांसर हैं, थिएटर एक्टर हैं, और जो ये मेरे आरजे बड़ी जो मेरे सामने बैठे हैं विपिन, उनके साथ उन्होंने कई नाटकों में काम किया है और मैंने देखा भी है. मैं नाटकों मैंने आपको स्टेज पर कई बार ही देखा हुआ है एक्टिंग करते हुए. और उनका वैसे पूरा परिवार ही कला में सहयोग देने में बिल्कुल आगे रहता है. तो एकता नथवानी जी, आपका भी 92.3 FM प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है.
3: थैंक यू सो मच राजश्री जी. आप बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बकेट लिस्ट में एक था कि मुझे रेडियो पर आना है. और आज़ादी के आज के ऐसे अवसर पर मुझे इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के बाद आपने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया. आई एम जस्ट बीइंग वेरी वेरी ग्रेटफुल राजश्री जी एंड विपिन जी. थैंक यू सो मच.
1: बहुत बढ़िया.
0: करना शुरू करेंगे विपिन आप?
1: बिल्कुल.
0: पहले सवाल के साथ, किसके लिए सवाल है?
1: सवाल से पहले मुझे लग रहा है कि
0: कॉल उठा लेंगे. बिल्कुल आ सकते शुरू से.
1: चलिए मैं कोशिश करता हूँ.
0: बिल्कुल उठा लीजिए.
1: हेलो, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हेलो
4: हेलो
1: हाँ जी
4: मैं ये गाना सुनना चाहती हूँ, चुरा लिया है तुमने मेरे दिल को,
1: चुरा लिया है तुमने जो मेरे,
0: बड़ा सुंदर गाना आपने बताया, चुरा लिया है। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे इसे चलाने की।
1: आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम?
4: मंजुला।
1: मंजुला जी,
4: चुरा लिया है तुमने मेरे दिल को।
1: चलिए धन्यवाद, हम आपको कोशिश करेंगे थोड़ी देर में प्रोग्राम में सुनाने का। चलिए,
4: थैंक यू बाय।
1: चलिए तो प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। अपना ईशा जी, आपने अपने बारे में कहा कि आप बड़ा क्यूरियस पर्सन हैं, तो ये आपकी क्यूरियोसिटी जो है ना, आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती है?
2: जी, आई थिंक जब मैंने कहा कि क्यूरियस पर्सन, आई एम मोर सॉर्ट ऑफ क्यूरियस फॉर दिस लाइफ, लाइक आई थिंक आई डोंट नो हाउ टू इसको कैसे आई स्टेटेड, बट सॉर्ट ऑफ नोइंग माई सेल्फ मोर, क्योंकि हम बाहरी चीज़ों को तो सभी जानने में लगे हैं, बट इफ़ वी डोंट नो आर सेल्फ, आई थिंक वो एक खाली शेल की तरह है, सो सभी सरफेस लेवल पे होगा, तो अंतर क्या है तो वो मेरे को जानना है, कितने इमोशन है लोगों के थ्रू, नेचर के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, अच्छा या बुरा, ज़रूरी नहीं सिर्फ अच्छी चीज़ें, बुरे इमोशंस, गुस्सा कहाँ से, कैसे, ये जीवन क्यों मिला, कैसे मिला, तो उससे रिलेटेड देन काफ़ी चीज़ें ब्रांच होती हैं, नोइंग अबाउट आर पेरेंट्स, उनका रोल, जैसे हम थिएटर में देखते हैं तो वही रोल हमारी रियल ज़िंदगी में भी होते हैं, तो आई थिंक दैट सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी इज़ ऑलवेज इन मी। जस्ट
0: आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि आप क्यूरियस हैं अपने आप को जानने के लिए, तो मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी है इसलिए पूछ रही हूँ, तो आपको क्या लगता है कि हम जब पैदा होते हैं एज अ होल पर्सन, हम जैसे बड़े होते हैं या with our experiences it gets put on, so how do you do you explore yourself as you are growing, yeah, there is something already inside you that you want to explore, like
2: I think jab hum chote hote hain, like bahut chote, to wo jo bachcha hota hai na, like it's bhagwan ka roop, I think we are full of life, so jaise jaise bade hote hain so the smile wo kam hoti jati hai, so कहती है अगर ज़िंदगी सीखनी है तो किसी बच्चे से सीखो, उसको सिखाओ नहीं, सो वेन एवर अ चाइल्ड कम्स इन योर लाइफ इट्स टाइम टू लर्न लाइफ, नॉट टू पुट योर थिंग्स टू द चाइल्ड, तो आई थिंक हम पैदा होते हैं एज अ फुल पैकेज, देन जैसे आपने कहा चार लोगों की बात, तो वो जब चीज़ें हमारे जहन में आनी शुरू हो जाती है देन वी ट्राई टू फिट इन टू समथिंग, तो वो एक सॉर्ट ऑफ ओपननेस या रिसेप्टिवनेस कम होती जाती है एज वी ग्रो, डजेंट मैटर एज, कई लोग 13-14 साल की उम्र में ही सारा कुछ जान लेते हैं,
1: बड़ा अच्छा बता रहे हैं आप, ऐसे ना जो आपने बच्चे वाली बात कही, हम लोग कई बार बात करते हैं कि जो बच्चा जो होता है ना वो बॉर्न योगी होता है,
2: एग्जैक्टली,
1: कि सब सारी नॉलेज के साथ बच्चा बॉर्न होता है, कि उसमें जैसे सीड में सारी चीज़ें होती हैं, हमारा जॉब सिर्फ ये है कि जो एज पेरेंट या एज ए टीचर या किसी का, कि उसको राइट सराउंडिंग देना कि वो सीड में जो पोटेंशियल है वो निकल के आ जाए बस।
2: जी, आई थिंक वो जो ओपननेस होती है ना, दैट वो मेरे को आई वॉन्ट कि वो मेरे से कभी ना जाए, दैट स्माइल एंड दैट ओपननेस ऑफ चाइल्ड, तो वो मैं अपने आप को आई ट्राई एवरी डे कि आई डोंट वॉन्ट टू लूज दैट वट एवर हैपन्स, तो
1: बहुत बढ़िया,
0: ब्यूटिफुल।
1: वैसे एकता जी, मैं आपसे भी जानना चाह रहा था एक चीज़, जैसे आप एक्टर डांसर दोनों ही हैं, अगर आपको दोनों में से कोई एक को चुनना हो, या मुश्किल हो जाएगा ऐसा कुछ?
3: नहीं, मुझे लगता है ये मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दोनों एक्टिंग एंड डांसिंग, वैसे देखने में तो दोनों आर्ट ही है, बट वो दोनों एक, मतलब मेरे लिए खास करके वो दोनों चीज़ें अलग है। डांसिंग में मैं अपने आप को पूरी फ्री करके, जो जितनी भी वरीज होती है या जितनी भी टेंशन होती है वो पूरा का पूरा फ्री करके मैं बस अपने के, जैसे एक, अब जैसे ईशा ने बताया कि जैसे एक बच्चा कैसे होता है, ना ही उम्र देखो, ना ही अपने आजू बाजू देखो, ना ऐसे देखो कि अरे मुझे कौन देख रहा है, बस अपने आप में नाचो, और जब भी मैं नाचती हूँ चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैंने जी ली अपनी ज़िंदगी, तो वो दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और जब थिएटर होता है तो थिएटर में मुझे ऐसे लगता है मैं अलग अलग किरदार जो निभाती हूँ, ये आज तक जितने भी मैंने किए हर एक किरदार से मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिला है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन वन लाइफ मैं कितनी सारी चीज़ें एक साथ जी सकती हूँ और अलग अलग नज़रिया देख सकती हूँ. कि अगर मैं कहीं पे एक मैंने कितने काफ़ी कॉमेडी प्लेस भी किए हैं, तो कॉमेडी वैसे लोग ऐसे बोलते हैं कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आई रियली एन्जॉय इट. और हर जगह पर और मुझे अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करने में वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी. जैसे हर एक कॉमेडी में करना, कॉमेडी का टाइमिंग, सारे डायलॉग्स याद रखना, एक बस हंसना और अपनी ज़िंदगी जीना. तो मेरे लिए मुझे ऐसे लगता है कि एक्टिंग एंड डांसिंग बोथ आर जस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. हर एक की जॉब होती है 9 to 5 डे जॉब्स तो सारे ही करते हैं, पर मेरे लिए जो लाइफ है दैट स्टार्ट्स फ्राइडे नाइट और जो संडे नाइट को ऐसा लगता है ओके अब मंडे टू फ्राइडे अगेन फ्राइडे इवनिंग तक मुझे जॉब करनी है, उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी.
1: वो तो हम लोग आर्ट्स वाले सब ये बात करते हैं ना कि हम जॉब इसलिए करते हैं कि हम अपने शौक पूरे कर सकें.
3: एग्जैक्टली.
0: पर एक तो आपने बताया नहीं कि अगर आपको पूछा जाए कि आप डांस चुनेंगी या एक्टिंग, किसी एक शाम को आपको चांस दिया जाए क्या चूज़ करेंगी आप?
3: तो मैं ऐसे करूँगी कि मैं एक्टिंग चूज़ करूँगी पर उसके अंदर मैं अपने डांस
0: डांस को फिट कर डालती. दैट्स अ गुड आंसर
3: बिकॉज डांस एंड थिएटर कान सेपरेट मी और मैं दोनों में से अलग नहीं कर सकती हूँ. तो फिर मैं ऐसे वर्क अराउंड करूँगी कि थिएटर चूज़ करके. इनफैक्ट मैंने अभी थोड़ी थोड़ी सिंगिंग भी शुरू की है मेरे हस्बैंड के साथ, पर सिंगिंग में भी आधा सिंग सॉन्ग होता है पर बीच बीच में डांस होता है म्यूजिक में, तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेती
0: हूँ. वैसे डांसिंग भी एक्टिंग ही है.
1: डांस से मुझे याद आया क्योंकि हम लोग मैंने और एकता ने साथ एक बार किया था, एक प्ले मैंने लिखा था बसंती डांस एकेडमी. तो उसमें हमने कॉमेडी था, स्टैंड अप कॉमेडी टाइप ही था वो पूरा. और उसमें एकता ने बड़ा अच्छा डांस भी किया था विच वॉज वेरी पॉपुलर.
3: आज भी लोग अगर मुझे कहीं पे देखे तो काफी लोग ऐसे नहीं जानते कि एकता ऐसे बोल अरे बसंती आ गई. तो वो सुन के तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे दैट वाज द टर्निंग पॉइंट.
0: कहते बसंती इन कुत्तों के आगे मत नाचना.
1: वो भी था उसमें कुछ ऐसा, कुछ उस टाइप का कुछ सीन था उसमें प्ले में हमारे में.
0: कुछ डायलॉग्स होते हैं ना जो भूलते नहीं है, वो बिल्कुल क्यू पे याद आ जाते हैं. बसंती सुनते ही अगला लाइन बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
1: अच्छा ईशा, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था. अभी आपने जो प्ले किया ये बिंदु की परिधि
3: जी,
1: अब अगर बिल्कुल इसमें इसलिए मत बोलना कि मेरे को अच्छा लगेगा या नहीं, इस बात को भूल जाइएगा. आपने वो प्ले क्यों किया? क्या आपको लगा कि उसमें आपको कुछ कन्विक्शन लगी या नहीं था, या जस्ट कि डिफरेंट था कुछ?
2: जी
1: कोई गलत सही वाली बात नहीं.
2: जी नहीं नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं वो शेयर करूं कि नहीं, क्योंकि इट्स वेरी पर्सनल टू मी.
1: बिल्कुल बिल्कुल, खुल के आप बात करिए.
2: मतलब ये सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स को पता है कि व्हाट इज माय विजन. तो मेरे को ये है कि आई वांट टू स्टार्ट एजुकेशन, कोई फाउंडेशन फॉर द अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन इंडिया, स्टार्टिंग फ्रॉम माय स्टेट और माय सिटी फर्स्ट. सो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी हुई है कौन से स्कूल्स, आई हैव चैटेड विद द टीचर्स. और ऐसी ये नहीं कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी, बट बच्चों को एजुकेशन है, बट हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू टॉक फ्रीली, हाउ टू मैनेज सोसाइटल प्रेशर. तो ऐसी चीज़ें जो उनको स्कूल में नहीं सिखाई जाती बिटवीन लाइक 5th to 9th. मतलब मेरा पूरा एक चार्ट बना हुआ है वैसे. तो जब आपने मेरे को बोला कि इट्स विद द एकल फाउंडेशन जो ऐसे करे, तो मैंने कहा विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, सो आई जस्ट सेड यस, क्योंकि इट्स वो उस चीज़ में हेल्प कर रहा है जो फ्यूचर में आई वांट टू डू. तो दैट्स व्हाई, तो ये मेरा विजन है. होपफुली
1: बहुत ही सुंदर
2: जी
1: प्रोसेस है. और आई एम श्योर जितनी आपकी इंटेंशन जब होती है तो चीज़ें लाइफ में होती भी हैं.
2: इस प्ले में भी यही था ना कि उसको एजुकेशन, जैसे परिधि उसको हेल्प करते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने में आगे, बट उसको जो कॉन्फिडेंस, उसको जो वो बताते हैं कि लोगों की बातों में नहीं आना, कि लोग तो कहते रहेंगे, वही चार लोग कहते रहेंगे, दे'ल चेंज इफ़ यू डू समथिंग गुड, वो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे. अगर एक भी गलती कर दोगे 100 चीज़ें अच्छी करके, देन दे'ल से द बैड थिंग अबाउट यू. तो वो ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता. इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ देन यू विल सक्सीड इन लाइफ नो मैटर वॉट. तो वही चीज़ें आई थिंक इस एज में वेन देर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर द यंग चिल्ड्रन, उनको ये चूज करना कि वेयर टू गो ऑन, तो वो चीजें आई थिंक आई वांट टू वर्क ऑन.
0: एक तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात करी तो आप एक मदर भी हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और आपने बताया कि हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और हमें टाइम नहीं मिलता है अपने लिए स्पेंड करने के लिए, तो इसलिए आपने फ्रेंड्स के साथ में आपने जो भी किटी पार्टी शुरू किया मुझे बहुत ही बढ़िया आइडिया है क्योंकि आई थिंक दैट्स अ मस्ट, हमें अपनी गर्लफ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो क्योंकि हम सभी के लाइफ में काफ़ी बैगेजेस हैं तो उसकी वजह से. तो मैं ना आपको ये पूछना चाहूँगी कि अब आप एक्टिंग कर रही हैं, आपने बिंदु की परिधि के इसमें जो आपने रोल किया था, तो मैंने देखा है कि जो मूवीज़, मैं मूवीज़ की तरफ जाना चाहूँगी कि मूवीज़ में भी फीमेल ओरिएंटेड मूवीज़ बनती हैं ओरिएंटेड, उनको फीमेल को ही मेन कैरेक्टर में रखते हुए बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं है और चलती नहीं है ज़्यादा, फाइनेंशियली बात कर रही हूँ मैं, क्रिटिकली उसको अक्लेम किया जाएगा सब कुछ बट वो इतना पैसा नहीं बना पाती हैं जो कि अगर मेल एक्टर हो. तो आप भी अभी एक्टिंग के इसमें आप काफ़ी दिनों से एक्टिंग करी, तो आपको अपने एक्सपीरियंस से कहीं आपको ऐसा लगा कि इट्स ईजियर फॉर मेल्स टू डू द एक्टिंग एंड गेट द अप्रूवल फ्रॉम द सोसाइटी जब आप एक्ट कर रही हैं कंपेयर टू वुमेन?
3: थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस राजश्री जी. डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने थिएटर शुरू किया करीब पिछले 5-6 सालों से, पर उसके पहले मैं हम सिंगापुर में थे, उसके पहले हम लंदन में थे, तो यहाँ सब जगह पे हमने यही देखा था कि इट वाज मच इजियर के जहाँ पे मेल एक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रोल्स दिए जाते थे और उनके ऊपर काफ़ी मूवीज़ होती थी और वो मूवीज़ काफ़ी चलती भी थी एंड सो टू से थिएटर्स एज वेल के उनके काफ़ी रोल्स होते थे और वो, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब थिंग्स हैव चेंज्ड एंड थिंग्स आर चेंजिंग, चाहे उसको फिर सोशल मीडिया कहो या आप अवेयरनेस कहो या काफ़ी काफ़ी जागरूकता के हिसाब से भी अगर आप कहो, बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, अब इक्वालिटी भी काफ़ी आ रही है, तो अब मुझे लगता है कि रोल्स आर इवॉल्विंग और हो रही है. जैसे अभी अपना ये था जो आमिर खान की वाइफ ने बनाया था
0: लापता
3: लेडीज़, या मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज वेरी वेरी सिंपल मूवी, बहुत ही साधारण तरीके से वो मूवी बनाई गई थी, पर जिस हिसाब से उसमें जो दोनों लेडीज थी उनको पूरा उभर के आए थे और उन्होंने पूरा शो किया था, डायरेक्टर एज वेल वॉज किरण राव, बहुत ही बढ़िया उन्होंने पूरा मूवी किया था एंड इट वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर, दैट वॉज सुपर्ब. और अभी हाल ही में अपना ये भी चल रहा है इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्स और सब आए और जिस तरह से मैंने देखा है कि रेखा जी जो आए और जिस तरह से काफ़ी लोगों ने, मतलब उनको सिर्फ देखने के लिए, हालांकि मेरे भी बहुत इच्छा थी और अभी भी इच्छा है कि मुझे सिर्फ उनको देखने का चांस मिला या उनको सिर्फ उनका ऑरा फील करने का चांस मिला, आई वुड हैव जस्ट asked for nothing else, but मेरी मतलब पूरी थिएटर लाइफ की तमन्ना पूरी हो जाएगी कि मैं उनके सामने खाली जाऊं और उनको देखूं. सो अब मुझे लगता है अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ रही है एंड इट इज़ गेटिंग मच बेटर. तो जैसे अब रेखा जी, उनको काफ़ी सारी अवेयरनेस मिल रही है, उनको काफ़ी अच्छी मतलब ट्रीटमेंट एंड पीपल आर जस्ट टेकिंग इट दैट, ऑल्दो वो लेडी है पर फिर भी उनको काफ़ी सारा इंपॉर्टेंस मिल रहा है. सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड आई एम फीलिंग सो सैटिस्फाइड अबाउट इट.
0: दैट्स अमेजिंग. तो वाकई में विपिन, हम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो ये भी एक प्रकार की आज़ादी है कि सारी इक्वालिटी आ रही है कि जितना मेल एक्टर्स को इम्पोर्टेंस एंड रास्ते मिलते हैं करने को उतना ही फीमेल एक्ट्रेसेस को भी मिलना चाहिए. तो चलिए इस आज़ादी की बात करते हुए कुछ थोड़ा एक सुकून लिया जाए.
1: बिल्कुल, सुकून लेते हैं थोड़ा सा.

0: चलिए वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय और विपिन को, और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो सुंदर सुंदर लड़कियां, लेडीज जो लापता नहीं है, हमारे साथ बैठी है ईशा और एकता। सो वेलकम बैक दोस्तों, आइए कंटिन्यू करते हैं जो हमारी मज़ेदार बातें शुरुआत में भी चल रही थी।
1: बिल्कुल।
0: हाँ दोस्तों, अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर है 03-9415-1923।
1: हाँ, बीच में एक दो जगह हम मिस कर गए हैं, अगर कोई कॉल अगर कर रहे थे और हम पिक नहीं कर पाए तो आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। और ईशा जी, आपसे एक बात पूछना चाह रहा था मैं कि आपने अभी अभी प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करी है, आप आईटी में काम करती हैं, फिर भी मैं एक जानना चाहता हूँ कि आपके लिए सक्सेस या सफलता का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि ये परिभाषा अगले कुछ वर्षों में बदल जाएगी, या आपको कहेंगे कि आप सक्सेसफुल हैं, या अभी, या क्या आपको लगेगा कि आप सफल हैं? हाउ विल यू जज योरसेल्फ कभी भी?
2: जी, तो सक्सेस की परिभाषा मेरे हिसाब से,
1: हाँ बिल्कुल
2: जी, आई थिंक मेरे हिसाब से, वेरी बिग क्वेश्चन, सक्सेस इज, पहले तो आई थिंक मुझे अपने पेरेंट्स को पूरी दुनिया दिखानी है, दैट वुड बी द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ माई लाइफ, जो चीज़ें उन्होंने नहीं देखी। हालांकि अभी वो आए भी थे लास्ट ईयर मेलबर्न हमारे पास, तो मैं उनको अपने थिएटर लेके गई, इंग्लिश थिएटर, अपने दोस्तों से मिलाया, दे वर सो हैप्पी। तो और दुनिया घुमानी है, जो चीज़ें, जगहें उन्होंने बोली हैं वो। एंड आई थिंक सक्सेस, जब मैं फ्रीली किसी को हेल्प करने के लायक हो जाऊँगी, लाइक नॉट इन ओनली इन टर्म्स ऑफ एडवाइस, इवन इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल, कि अगर मेरे पास कोई मदद, या वेयर आई वॉन्ट टू पुट माई मनी, तो मेरे को सोचना ना पड़े अच्छी चीज़ों के लिए। एंड जस्ट
1: मेरा ख्याल है इंटेंशन होती है तो सब मनी भी आ जाती है, सब चीज़ें आने लगती हैं, इंटेंशन।
2: वही अभी मैं सोच रही हूँ कि जस्ट बिल्डिंग, जो चीज़ें लाइक होती है ना लाइफ में टिक ऑफ करनी, सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सो फिलहाल तो वो है। बट इस जीवन के लिए आई थिंक सक्सेस वुड बी कि टू अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना एज मच एज आई कैन डू।
0: मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूँगी, जो भी जवाब देना चाहे इस चीज़ का। एंड ये बात जस्ट मेरे दिमाग में आई कि जैसे कि क्रिएटिविटी तो वैसे फ्रीडम है, कि आपको फ्रीडम मिलता है टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो जब आप शुरुआत करते हैं ना, तब कोई देखने वाला नहीं होता, बिल्कुल ब्रांड न्यू होते हैं, तो देर इज़ नो इनहिबिशन, देर इज़ नो कि मुझे कौन जज करने वाला है, आई डू व्हाट आई वांट टू डू। बट एक टाइम आता है, जैसे आप अब 5 साल से कुछ कर रहे हैं जो भी, तो यू सॉर्ट ऑफ बिकम सक्सेसफुल, आप कहते हैं लोग आपको जानने लगते हैं जब, तो तब आपको क्या ऐसा लगता है कि अब मुझे लोग जान रहे हैं, तो दैट वर्क्स काइंड ऑफ अ सेंसर फॉर यू इन योर माइंड, कि अब लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो इफ़ आई डू दिस विल दे लाइक इट और विल दे नॉट, लास्ट टाइम उन्होंने ये लाइक किया था तो आई विल जस्ट कंटिन्यू डूइंग इट लाइक दिस, डू यू फॉल इन दैट ट्रैप या डू यू स्टिल चूज व्हाट यू वांट टू डू?
3: मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा लोग मुझे जान रहे हैं, लोगों से ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि जो किरदार मैं निभा रही हूँ, अगर मैं इंजॉय कर सकती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कर रही हूँ और आई एम नियरली देयर, तो जो मैं दर्शाना चाहती हूँ वो अगर दर्शक एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वही रोल्स करने चाहिए जो मुझे अच्छे लगते हो और जो मुझे सेटिस्फाई करते हो। तो मैं हमेशा ऐसे ही किरदार चूज़ करती हूँ, ना ही कि ऐसे कि अच्छा आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है, चलो कॉमेडी करो, अरे आजकल तो सारे फास्ट गाने चल रहे हैं तो चलो उस गाने पे करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वॉन्ट टू गो विथ द ट्रेंड, आई वॉन्ट टू गो विथ जो मुझे अच्छा लगे, जो मुझे सूट करे और जिसमें मुझे मेंटल खुशी मिले और जिसमें मैं अपना बेस्ट कर सकूं। तो एंड आई लिटरली बिलीव कि जो मैंने किया है या जिसमें मैं अपना बेस्ट कर सकूं, तो लोगों को भी वो चीज़ फील हो सकती है। जैसे अभी अभी हमने अपना जो ड्रामा किया है बिंदु की परिधि, उसमें भी जो डायरेक्टर विपिन जी थे, उन्होंने यही चीज़ सिखाई कि लोगों को आप ऐसे ही दिखाओ मत, मतलब अगर अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगे तो दूसरे लिखेंगे तुम्हारी कहानी, वो भी अपनी मर्जी से। तो ये बात मुझे सबसे ज़्यादा ये बात मैं मतलब आई एम ट्राइंग टू टेक दैट इन माय ओन लाइफ एज वेल एंड आई हैव लर्न्ड और मैंने काफ़ी सारी जगह पे इसको रख के भी देखा है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है. अगर मैंने क्योंकि लोगों को ऐसे दिखाया था तो उन्होंने ऐसे देखा, अगर मैं इनको इन लोगों को अगर मैं अपनी तरह से इस तरह से अगर मैं दिखाती तो वो ऐसे देखते. सो आई लिटरली फील के सारे जो रोल्स और सारे जो किरदार जो मैं निभाती हूँ वो अब मुझे ऐसे निभाने हैं जो मुझे छू जाए या मुझे ऐसा लगे कि आई एम गिविंग माई बेस्ट टू द ऑडियंस और वो भी वही एक्सेप्ट करेंगे. सो आई लिटरली फील दैट्स द जिस्ट ऑफ द होल थिंग.
1: अच्छा एक बात बताइए कि अच्छा एक्टर बनने के लिए सिर्फ एक्टिंग सीखना जरूरी है या लोगों की जिंदगी को ऑब्जर्व करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है या क्या प्रेफर करेंगे आप?
2: मेरे हिसाब से आई थिंक अच्छा एक्टर बनने के लिए आपको एक्टिंग लगनी नहीं चाहिए कि यू आर एक्टिंग. इफ़ यू आर लिविंग दैट पर्सनैलिटी और दैट रोल. और मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर जो आपके ऑडियंस है वो फील कर पा रही है जो आप दिखाना चाहते हैं, कि अगर आप दिखाना चाहते हैं कि वो बंदा बहुत खुश है और वो फील कर पा रही है, देन यू हैव डन योर जॉब. तो आई थिंक ऑब्जर्व मेरे लिए है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस सिचुएशन में आप असल में हो, चाहे वो स्टेज पे है चाहे आप 10 साल पहले की बात हो रही है स्टेज पे. सो यू आर इन दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड. और उसके बाद यू आर ऑफ कोर्स जो आपका कैरेक्टर है आपको उसकी स्टडी करनी चाहिए. यू हैव टू ऑब्जर्व कि अगर वो 10 साल की बच्ची है वो कैसे बिहेव करेगी अगर वो हेजिटेंट है, जैसे मेरा बिंदु का कैरेक्टर था
1: जी.
2: तो अगर उसको कोई नई चीज़ मिली है और वो थोड़ी शाय है, वो शर्मा रही है कुछ कहने के लिए, तो वो कैसे शर्माते हुए कैसे कहेगी? तो वो कैरेक्टर की स्टडी. और अगर वो ओल्ड कोई बंदा है तो वो कैसे थोड़ा हंचबैक होके चलेगा या कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन. तो आई थिंक इट्स ये सारा है ऑब्जर्व करना, अपने आप को ऑब्जर्व करना, दूसरों को ऑब्जर्व करना, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ थिएटर. आई थिंक दैट व्हाट मेक्स यू अ गुड एक्टर, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड.
0: तो ईशा, डू यू थिंक कि टू बी अ गुड एक्टर एक्ट्रेस यू नीड टू स्टडी एक्टिंग या आप नेचुरल भी हो सकते हो? स्टडी आपको एज देगा एक्टिंग में, डू यू थिंक दैट?
2: ये आई थिंक प्योरली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई थिंक अगर आप पैशनेट हो तब तो, जैसे है ना कि अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए पैशनेट हो अब तो डिग्री भी मैटर नहीं करती, यू कैन प्रोसीड. इवन 12-13 साल के बच्चे बड़े बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं. तो इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट वट एवर यू डूइंग, लेट्स से फॉर माइक इज एक्टिंग में, तो आई डोंट थिंक कि एक कन्वेंशनल एजुकेशन चाहिए. येस दैट हेल्प्स, आपको मेथड्स पता चलेंगे आपको इसीलिए जैसे हमारा पूरा नाट्य शास्त्र है उसकी पढ़ाई, उसमें सारा लिखा है. तो अगर आपको आपके पास इतनी एनर्जी है, आपको दिशा नहीं पता, तो वो आपको एक दिशा दे सकते हैं. बट अगर वो पैशन ही नहीं है तो जितनी मर्जी एजुकेशन हम करें वो प्योरिटी, वो इफेक्ट लोगों पर नहीं आ पाएगा. तो आई थिंक इट गोज बोथ लाइक पैरेलल, बट पैशन ज़्यादा होना चाहिए रादर देन.
0: आई लव दैट आंसर कि आपकी एनर्जी को एक दिशा देता
2: है. दिशा देना,
0: या एंड दैट इज सो ट्रू.
1: अच्छा एक हमने हर बार, हमारे साथ बहुत सारे म्यूजिशियंस भी आए हैं, बड़े अच्छे इंटरनेशनल म्यूजिशियंस थे, कई और लोग आए हैं, हमने कई बार रैपिड फायर किया है. अगर इफ यू आर अ गुड स्पोर्ट वी कैन ट्राई दैट थिंग.
0: विपिन का रैपिड फायर, यू रेडी फॉर दैट गर्ल्स?
2: लेट्स डू इट.
1: ईदर ऑफ यू कैन पिक दैट थिंग.
2: ओके,
1: तो आपके सिंगल वर्ड में या कैसे भी, अभिनय या नृत्य?
3: अभिनय.
2: Oh God, अभिनय.
1: तो अगर आपकी जिंदगी पर एक फिल्म हो तो उसका टाइटल क्या होगा?
0: ये रैपिड फायर है.
1: क्विक क्विक, जो भी दिमाग में आ रहा है.
2: जीना इसी का नाम है.
1: वाह क्या बात.
3: और मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो फेमस डायलॉग्स है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
1: वाह वेरी गुड स्पिरिट.
0: स्टेज पर जाने से पहले ज्यादा नर्वस या ज्यादा एक्साइटेड?
2: एक्साइटेड.
3: एक्साइटेड. मैं पहले नर्वस होती थी पर अब लेटली आई एम वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ मेडिटेशन एंड वो सारी चीजें, तो अब मुझे एक्साइटमेंट ज्यादा होती है और वो मैंने देखा भी है कि इट हेल्प्स अ लॉट.
0: क्या ज्यादा मुश्किल है, एक डायलॉग याद करना या डांस के स्टेप्स याद रखना?
2: आई थिंक डायलॉग, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द इमोशन क्या है, तो एक डायलॉग कैन बी सेड लाइक इन वेरियस वेज. तो
3: मेरे हिसाब से बिकॉज मैं हमेशा दोनों ही करती हूँ, डांस और ड्रामा दोनों ही, पर जैसे अगर डांस में नृत्य में अगर आप देखो तो वो ऐसे होता है कि आपने इतनी बार उसकी प्रैक्टिस की है तो वो मसल मेमोरी बन जाता है, और आप चाहे जैसे भी मतलब कैसे भी अगर आप भूल भी रहे हो तो आपका मसल या आपका बॉडी आपको उस तरह खींच के लेकर आएगा. पर वैसे अगर आप डायलॉग्स में देखने जाओ तो एक ही डायलॉग, इवन इट डिपेंड्स ऑन द मूड, इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस, इट डिपेंड्स ऑन के आपके मन में उस समय क्या चल रहा है. सो ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है. तो मुझे ऐसे लगता है कि मोर डिफिकल्ट इज अ डायलॉग रादर देन अ डांस.
0: ये बिल्कुल रैपिड फायर है. ओके, वन वर्ड में आंसर चाहिए मुझे. आप अगर आपको किसी बॉलीवुड स्टार के साथ एक सीन करना हो तो वो कौन होंगे क्विकली? अरे रिकवर
3: माइंड मतलब रेखा जी.
0: जी मैं तुमसे पहले आंसर दे सकती थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि
1: तुम रेखा लग रहा था, इतना क्या सोचना पड़ गया.
3: नहीं रेखा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा ना लगेगा. अरे भैया ये तो
0: डजंट मैटर,
3: ये तो आपका बहुत बहुत
1: अभी मेलबर्न में ही है.
3: अरे इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि बस मतलब मुझे ऐसे लगेगा जैसे भगवान मिल गए, बस मुझे उनको खाली एक बार देखना है और उनका ऑरा फील करना है.
2: गुरदास मान जी.
0: वाह क्या बात है. और ऐसा कौन सा गाना है जिसे सुनते ही आप खुद को रोक नहीं पाते, आपके कदम थिरक उठते हैं?
3: थिरकने में तो काफ़ी सारे हैं, मतलब डांस के हिसाब से अगर आप देखने जाओ तो मैं इतने डांसेस किए हुए हैं, तो जैसे अभी अगर डोला रे डोला आज भी बजता है तो वो ऐसे लगता है अरे बस जस्ट खाली नाचना शुरू कर दो, तो जैसे डोला रे डोला.
1: अच्छा दोनों से ही मैं पूछना चाह रहा था कि कोई लाइव परफॉर्मेंस की कोई ऐसी घटना या दुर्घटना जो भी कहिए आप, या मेल फंक्शन या कुछ भी हो सकता है, कोई मेमोरेबल थिंग कुछ
2: लाइव परफॉर्मेंस की.
1: हाँ कुछ भी हो सकता है ऐसा कुछ
0: कि आप डायलॉग भूल गए.
3: अभी हाल ही में ऐसा हुआ था कि हम जब ये बिंदु की परिधि कर रहे थे तब हमारे एक हमने काफ़ी प्रिपरेशंस की थी इसके लिए, तो उसमें ऐसे था कि चाय का कप अब मैंने बोला बिंदु से कि अरे बिंदु चाय का कप यहाँ पे लेकर आओ.

0: अच्छा ये गर्म करके ले आ।
1: मुझे ये भी लगता है कि जहाँ कोई भी चीज़ जब गड़बड़ होती है ना, वो चीज़ अच्छी मेमोरी बन जाती है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हर चीज़ परफेक्ट चलेगी तो वो याद नहीं रहता कुछ भी आपको
0: जी,
1: उसका
0: बिल्कुल।
1: तो अच्छी बात है कि आई थिंक जो होता है ना कि शो मस्ट गो ऑन, जो थिएटर का जो मज़ा है कंपेयर्ड विद फिल्म शूटिंग एंड समथिंग, मैंने जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है फिल्म शूट करने का या थिएटर का जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं आ सकता।
0: जी,
1: वो
0: वहाँ पे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी 1000%। यू कांट लाइक आप अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ सकते, आपको उसी में कुछ लाइनें कहनी है देखते हुए कि अगली डायलॉग मैच कर जाए, तो
2: कोई टेक नहीं होता है।
0: कोई जैसे टेक नहीं है
2: फिल्म्स में हमने देखा है कि अच्छा टेक कट, ये कट हो जाता है, पर वहाँ पे तो कुछ नहीं होता, इतने ऑडियंस आपके सामने बैठी है तो बस आपको द शो मस्ट गो ऑन।
3: जी बिल्कुल।
1: अच्छा एक बताइए लास्ट, मतलब रैपिड फायर का बता रहा हूँ, वैसे तो नहीं, लाइफ में जरूरी क्या है, टैलेंट, मेहनत या थोड़ा सा लक?
3: ज्यादा जरूरी,
0: तीनों में से।
3: हाँ। ज्यादा जरूरी
0: ग्रेस।
1: वाह,
3: चौथी चीज।
1: निकाल के लाए।
2: मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सबका साथ एंड मेंटल स्टेट ऑफ माइंड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन एवरीथिंग। और साथ में अगर आपकी फैमिली साथ में हो और वो अगर आपको सपोर्ट करे, आई थिंक यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड आई एम द लाइव एग्जांपल ऑफ इट।
1: एकता जी के सिवा कौन जानता होगा, फैमिली की सपोर्ट जो है बहुत ही बढ़िया।
3: एक्सेलेंट। चलिए विपिन, टाइम का मेरा ध्यान घड़ी की तरफ गया, और हम सब कहते हैं कि वक्त बहुत तेज भाग रहा है, शायद वक्त नहीं हम ही उसके साथ रेस लगा के बैठे हुए हैं, है ना। तो कभी तो दिल चाहता है कि एक खूबसूरत लम्हा थोड़ा ज़िद्दी हो जाए, घड़ी आगे बढ़ने से इनकार कर दे, शाम ढलना भूल जाए और हमें कहीं पहुँचने की जल्दी ही ना हो। तो आइए ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: हाँ, ये बता, क्या ये हो सकता है? क्या कभी वक्त भी थकता है? वक्त चलना भूल जाए, दिन ये ढलना भूल जाए, चल दुआ मांग के ऐसा हो, और ये हो जाए तो कैसा हो। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं विपिन और राशि को, और हमारे साथ है एकता और ईशा, और बहुत मज़ेदार बातें चल रही थी।
1: खूबसूरत इवनिंग चल रही है जी। बहुत ही कला पर बातचीत चल रही है, और बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं कि ग्रेस का क्या है इम्पोर्टेंस, और कहाँ से कहाँ निकल के आ रहे हैं, क्या क्या एम्बिशंस हैं लाइफ में, क्या सक्सेस मिलने वाली है, और कहाँ से उसके मीनिंग निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों, घड़ी की सुइयाँ भी बड़ी तेज़ चल रही हैं। मैं थोड़ा सा कुछ कम्युनिटी अनाउंसमेंट भी बता देता हूँ आपको कि राकेश बेदी जो हैं आजकल धुरंधर फेम के, उनका शो आ रहा है थिएटर प्ले मसाज, नाम से मतलब मिसलीड मत होइएगा। हमने भी एक प्ले किया था, मैंने और एकता ने साथ से, कुछ इसी टाइप के थीम पर। तो वो और हमारा

0: गीतांजलि रेडियो प्रोग्राम 92.3 एफएम जो है उनका रेडियो पार्टनर है, तो उसके लिए अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 04326805072 पर। और नाट्य दर्पण भी उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको अपनी उसकी एक्टिविटीज़ को, और बड़ा अच्छा वो मेरे ख्याल से शायद 24 डिफरेंट कैरेक्टर राकेश बेदी प्रेजेंट कर रहे हैं 2 घंटे के नाटक में, तो मज़ेदार होगा। बॉक्सल टाउन हॉल में हो रहा है, और अगर आप टिकट बुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं bit.ly/rakesh_bedi_dry_tickets. और अगर आप चाहें तो मुझे भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए या कुछ और भी जानना चाहते हैं, और ख़ास तौर से साउथ ईस्ट सबर्ब वालों के लिए तो और भी मज़ा है, बिल्कुल पास में ही है। और एकल विद्यालय का तो जैसे आपको बताया था अभी पिछले हफ्ते संडे को प्रोग्राम हुआ था, और उस प्रोग्राम में लोगों की सपोर्ट से हम लोग जो है करीब 7 स्कूल जो हैं भारत के रिमोट गाँवों में और ट्राइबल एरियाज़ में के लिए फ़ंड इकट्ठे कर सके हम 1 साल के लिए। तो बड़ी खुशी की बात है कि लोगों का इतना सपोर्ट मिला जिसकी वजह से हम इतना कुछ कर सकते हैं।
1: बहुत ही बढ़िया।
0: और आगे जब हमारे ईशा जी जब कुछ और आगे चलाएंगी तो और भी कुछ होगा, नई नई चीज़ें होंगी, तो यंग जनरेशन की इतनी अच्छी सोच है तो बदलाव भारत में भी आएगा और दुनिया में भी आएगा इसी बदलाव से। और बॉलीवुड नाइट एक और 26 का चैरिटी फंड रेजर हो रहा है इसी तरह के थीम पर, 3 अक्टूबर को, जो IIMPACT इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया जो कि रजिस्टर्ड चैरिटी है डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन टू गर्ल्स एज 6 to 14 इन रूरल एंड रिमोट इंडिया, तो जहाँ पर कि जेंडर लिटरेसी गैप्स काफ़ी ज़्यादा हैं सब जगह, तो उनके लिए फ़ंड रेज कर रही है। उनकी बहुत बड़ी इवेंट हो रही है बॉलीवुड नाइट्स 2026 जो 3 अक्टूबर को है, और इसके लिए आप चाहें तो आप कॉन्टैक्ट, वो बड़ा अच्छा बड़ा शो हो रहा है, उसमें डीजे राउंड टेबल डिनर वगैरह है, देसी बीट्स, लाइव डीजे है, ऑक्शंस हैं, रेफल्स हैं, 3-course dinner है, वाइन बियर सॉफ्ट ड्रिंक्स BYO लिकर है, तो उसमें भी आप चाहें तो आप जानकारी हमसे ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, हमारे चैनल पर भी मिलेगा आपको उसके बारे में। और इसका जो है वेन्यू है गोल्ड रिसेप्शन कैरम डाउंस में, और इस 3-course dinner की बात तो सिमिलर थीम है भारत का हो रहा है, बड़ा अच्छा ओकेजन भी, जैसे कि आप देख रहे हैं आज भारत का इंडिपेंडेंस डे है और बड़े अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। और
1: तो वैसे विपिन, आज मैं BMW एज पे गई थी और वहाँ पर चैट चल रहा था राजीव मसंत के साथ में, पैनल में 4 women थी, वुमेन पावर, गो वुमेन पावर।
0: I'm feeling very weak now. I think amongst three girls.
1: हाँ बिल्कुल, तो कीर्ति कुल्हाड़ी, डॉली, रीमा कागजी एंड आजमी, आई फॉरगेट हर फर्स्ट नेम, येप, सो ये पैनल पे थे और बड़ी अच्छी बातें हुई एंड लाइक काफ़ी वुमेन इन सिनेमा के बारे में बातें हुई, और उसी टॉपिक पर थोड़ा बहुत मैंने आप दोनों से भी वही उसी को कंटिन्यू करते हुए, तो मेरे लिए तो मुझे लगता है काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग रहा आज का दिन। आप बताएं आपको कैसा लगा इनसे बात करते हुए, मैं आपको ऑन द स्पॉट डाल रही हूँ।
0: मुझे तो बड़ा इंस्पायरिंग लगा, खासतौर से जिस हिसाब से एक यंग जनरेशन का जो ओपिनियन मिला मुझे ईशा से, तो बड़ा इंस्पायरिंग लगा। एकता को तो मैं बहुत पहले से बहुत अच्छे से जानता रहा हूँ, बहुत साथ हमने काम भी किया है, और बड़ा ही एनर्जेटिक इनका पूरा फैमिली जो है, पूरा जब प्रोजेक्ट आता है, जब हमने बिंदु की परिधि का भी सोचा था तो फैक्ट ये है कि इट वाज मोर बिकॉज ऑफ हर कि मैंने किया, एक्चुअली एकता ने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया सब चीज़ों को।
1: आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने एक वुमेन सेंट्रिक सब्जेक्ट चूज किया।
0: हाँ, इसमें तो एक्चुअली कोई कैरेक्टर सारे थे ही मेल, बल्कि एक दो तो हमने बाद में वैसे ही डाल दिए,
1: एंड आई थिंक जो कैरेक्टर्स भी आपने चूज किए थे देवर नॉट कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरली स्ट्रॉन्ग वुमन नहीं दिखाया कि हु वांट्स इट ऑल, इट्स लाइक अ नॉर्मल
0: आम लोग
1: वुमन जो, तो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी शोन इन द सोसाइटी, कि हमें कोई, जब तक हम स्ट्रॉन्ग वुमन को ना दिखाए तो शी कांट बी पुट ऑन द पेडेस्टल, ऐसा नहीं है। एवरी वुमन has that in her, है ना?
2: Day-to-day life वाली जो हम अपने आप को खुद महसूस कर सकते हैं कि अच्छा मैं भी इस किरदार में आ सकती हूँ, मैं भी ऐसे ही फील करती हूँ जब कोई आए घर पर. तो हमने यूजुअली देखा है कि लोग जैसे कोई काम वाली या कोई हो तो उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं, अच्छा ये तो काम वाली है, उनको मत देखो या उनसे बातें मत करो. पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. दे इक्वली डिजर्व द सेम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट, चाहे वो कोई कैसे भी हो. इट डजंट मैटर कि वो कौन से लेवल पे हो, बट या एवरी वुमेन डिजर्व्स रिस्पेक्ट.
1: ईशा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो आजकल जेन जी की इतनी बातें हो रही हैं, विपिन ने भी मेंशन किया था, ये तो हर इसमें आजकल इज जस्ट द वर्ड
0: बिल्कुल चल
1: तो
0: रहा है.
1: तो ये जो जेन जी हैं, ये दे आर ऑफन अक्यूज ऑफ हैविंग अ वेरी शॉर्ट स्पैन. 15 सेकेंड की रील्स बहुत चलती हैं. तो डू यू थिंक कि ये जो लोअर टॉलरेंस फॉर लॉन्गर प्लेस, लॉन्गर कॉन्टेंट, इससे स्टोरी टेलिंग
3: इम्पैक्ट होगा कि नहीं,
1: कैसा, मतलब आपको क्या लगता है कि इज इट लाइक बीइंग डिसऑनेस्ट टू द योर क्राफ्ट?
3: जी, आई थिंक बीइंग अ जेन जी, ओके, आई हैव टू से फ्रॉम एवरीवन, बिहाफ ऑफ एवरीवन, आई थिंक अक्सर मिलेनियल्स और बाकी लोग ये कहते हैं कि वी हैव अ वेरी शॉर्ट अटेंशन स्पैन. बट मैं इसको इस नज़रिए से देखती हूँ कि वी डोंट हैव अ शॉर्ट अटेंशन स्पैन. वी डोंट वॉन्ट टू पुट आर अटेंशन टू द थिंग्स दैट डोंट वर्थ आर अटेंशन. तो लाइक अगर कोई चीज़ हमें लग रहा है कि वो हमारी अटेंशन को वर्थ नहीं कर रही, सो वी आर क्वाइट ओके टू सेइंग नो टू द थिंग्स. जो मिलेनियल्स और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो नहीं कर पाते, वो उन रिश्तों को ही कंटिन्यू करी जा रहे हैं जो they don't worth having that attention in your life just for the sake ki wo hamare rishte hain, you know, not in terms of rishte, koi bhi cheez ho. To I think hamare paas itna courage hai ki we are happy to say no. Isko negative tarike se bhi dekha ja sakta hai aur positive bhi. To I think agar aur iska definitely has like a lot of impact on the content that is being created, like reels log dekh rahe hain, wo bhi aadhi skip kar dete hain. To even for the theater, that's why I was, whenever I go for a theater show, though I'm a bit hesitant to call my friends ki what they will think, will they sit for, they are not even sitting for a 3-hour movie in a one go, so will they come for my theater show or not. But recently abhi jo last play maine kiya tha Dastak, Hindi play, my first Hindi play in Melbourne, so I invited them and they were so drawn, kyunki if the story is worth telling, if the story is something that they can relate, जैसे वो story थी कि थोड़ा patriarchy पे female feminicide, तो ऐसे. So one of my friend, he was from Rajasthan, so he said the character that was shown starting of the show, जिसमें वो एक लड़की को लेके जाती है एंड वो कुएं में फेंक देती है दादी, कहता माई दादी वॉज द सेम, ही किल्ड मेरी भुआ कितने. तो आई एम लाइक सीरियसली, तो कहता प्लीज इन्वाइट मी फॉर दिस सॉर्ट ऑफ शोज, एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम दैम. सो आई थिंक of course content, I think content matters,
1: content
3: rather than kitna lamba hai ya chota. We do watch series,
1: yep. Aap content
3: Game of
1: the
3: Thrones
1: king.
3: Dekh lo, 8 seasons itne, so we watch, but we it has to be worth our attention, I think.
1: Absolutely. Vipin, mujhe to ek baat pata chal gayi ki main bhi Gen Z hi hoon. I think don't go on my age, okay.
0: तो मैं तुमसे एक क्विज पूछता हूँ, चलो.
1: अच्छा, मुझसे हो? हाँ, I'm being put on the spot.
0: मैंने कहा कि तुमने मेरे को on the spot किया था ना.
1: ओके.
0: अच्छा, ये बताओ कि एक घर में आई लव यू और आई मिस यू दोनों रहते थे. आई मिस यू घर छोड़ के चला गया, तो क्या बचा?
1: इसका जवाब ईशा देगी. सॉरी, ईशा देगी या एकता देगी, कम ऑन.
3: आई मिस यू चला गया.
1: हाँ, तो कौन बच गया? विपिन, आपसे कुछ कहलवाना चाह रहे हैं.
3: आई लव यू,
2: ये तो हमेशा ही बोलते हैं विपिन जी, इसके लिए भी हमें रीडल की भी कोई जरूरत नहीं थी.
0: बड़ा मजा आ रहा है वैसे आप लोगों से बात करने में, और ईशा जी हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आप और दोनों में से कोई कुछ श्रोताओं के लिए कुछ बोलना चाहते हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं आप. दुनिया भर के लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं इस वक्त, किसी भी कोने में दुनिया के.
2: मेरे लिए तो जो मैंने अभी अभी महसूस किया है और अपनी लाइफ में मैंने ये लिटरली एक्सपीरियंस किया है, और जो हमने रिसेंट डायलॉग भी बोला है कि अपनी ज़िंदगी खुद, हमने जो हमने अपने रिसेंट प्ले में बोला भी है कि अगर अपनी ज़िंदगी खुद नहीं लिखोगे तो दूसरे लिखेंगे तुम्हारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से. तो आई एम जस्ट सेइंग इट्स टाइम नाउ. Start writing your own story and don't let people write your story. So
1: and
2: just
1: and edit it often. And that is my write your own story and keep editing
2: keep,
1: it. That's
2: keep
1: what
2: editing,
1: I believe.
2: Keep
1: in
2: editing it and whatever makes you happy. So bas apni kahani khud likho.
0: चलिए ईशा जी, आप हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपको सिर्फ इसलिए एक टैलेंटेड एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे युवा इंसान के रूप में देखता हूँ जिसमें सीखने, खोजने और ज़िंदगी को पूरी तरह जीने की खूबसूरत इच्छा है. और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं.
3: थैंक यू सर.
1: थैंक यू सो मच एकता और ईशा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने. होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा. एंड
2: बहुत तो बस हम यहाँ पर आने से पहले ऐसा लग रहा था कि अच्छा अरे ये तो रेडियो इंटरव्यू है और कैसा होगा और क्या होगा, बट बातचीत करके बहुत अच्छा लगा.
1: चाय पे चर्चा,
0: बल्कि बहुत साधारण से सवाल से हमने शुरुआत की थी, आज़ादी का मतलब क्या है. और बातचीत से एक बात साफ हो जाती है कि आज़ादी का अर्थ जो है हर इंसान के लिए अलग अलग होता है
3: जी.
0: और शायद कला हमें इस आज़ादी को बड़ा खूबसूरत रूप देती है. कलाकार जब मंच पर होता है ना, जब कोई कहानी लिखता है, कोई गीत गाता है, कोई नृत्य करता है या कोई किरदार निभाता है, तो वो सिर्फ कला प्रस्तुत नहीं कर रहा होता, वह अपने भीतर किसी दुनिया को सामने रख रहा होता है. तो वही हमें आज़ादी देती है.
2: तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि आज़ादी फिजिकल से ज़्यादा आज़ादी, मेंटल आज़ादी इज द अटमोस्ट हैप्पीनेस, योर अटमोस्ट फ्रीडम.
1: जी हाँ बिल्कुल. तो आज हमने इतनी आज़ादी की बात की, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ अस, ऑल अस इंडियंस. सो 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए. और अपनी सोच और क्रिएटिविटी की आज़ादी भी आप अपने साथ रखें, क्योंकि जो ये नया इंडिया है सिर्फ नई बिल्डिंग्स और नई टेक्नोलॉजी से नहीं बनेगा, नए आइडियाज़ से बनेगा. तो बस ख्याल अपना हो, अंदाज़ अपना हो, और क्रिएटिविटी पर जैसे कि ईशा कह रही थी, लोग क्या कहेंगे का फिल्टर ना हो.
0: बहुत बढ़िया, इसी सोच के साथ इस खूबसूरत शाम को
1: कीप थिंकिंग, कीप क्रिएटिंग, और जिंदगी कहे तो मुस्कुराकर कहना आजमा ले.
0: वाह,
2: लव यू जिंदगी.

मन को एहलाल गुण तो बिछुरा जब आपकी औस निधान बने अखीरण में तब जूझ मरो